0: अन्य क्या क्या जिसमें तो हाँ नो दो जी जो चुकोल जग और चुकोल जग आने ही गया हाँ ये मिंग काम है आप फिर नो गया जी जी हो चुकोल जग आने चुके उधर वेस्ट का जो इन्नम्स का चुके कई वेबसी सही है जी पुन पयो नहीं तो दागनो चुके सही इंजी गया है कुछ माल जी गया हाँ उधर गया वेस्ट के इन्नम्स का है कुनो ये यो आई है जी उस ताऊ जिम्स नहीं गने गया जी जब दागनो चुके हैं हो चुकोल जग आने वस मुझे जो मेहनत हम जगह वाप मातो गया न्यून में शेक के अंदर याये हो गया एको क्या जी जिन में शेज अंदर याये हो गया जो वाप मातो गया न्यून में शेज अंदर एक ताई चुके कोई उमा बेग मुझ माओ के नो इबो वापाची कोई जिन ही भी जी जी यम ही मोमा जी बेट में उधर नेम्स का जो इताया गया वेब सी सही है जी पॉइंट पयोन है गजी गजी इसमें तो हागनो दो गया वो एंजे है उसको अच्छे दो गया कोई मिंग काम है तू दागनो है सस्वी पे जाए जो गया ने दे वेस कित नेम्स का जाए मिंग का पीस्ते होने जे जी इसमें तो हागनो दो एंजे जाए जो कौन वाचे चिप चिपी चो वेब सी शन है
1: आई इन गया इन आई फिशिंग इन डर्बी ये तो देखना तो स्टार इम स्टीजी कि गाच ना ना दिया ने मैसे दे वाट मार गया ने मेतन से कुछ तो महाई नो दान जी दे मार गया ये क्या टाली मैन है ए दादू एन वी याहू क्स सोनिया जे जी ना कुछ स्टार्ट नहीं है दान जी तू देखने जी क्या वाइल्ड लाइफ क्या सो क्या मीटिंग क्या आज ने जी टाली मैन 42 ने दैट एरिया दैट जेम याद क्या जे जी catch and release it, you don't know the only message I got in a system high no dog, Egan, Jagan, Gamson, who said him, and he can did you follow Nanathan and English with staff, yeah, because Taliban has right to say something to protect.
0: Dunsy Dane, Negay Dane, I hear, Uskazga got the diagnosis, I hear, as he date men gets them hagging or door, I hear, the message done how great Nanot needs them.
1: Nge, go what man, yeah, Nasim's tear, you got snine or don't mess it up. Your ten is waiting, Nasim's tear got snine or don't. Big on the Yayuiana, and you up ten along the shore, the messy. It's the behind of the but the pig with me, what they did. And the pig with me, I'm going to go after man. I'm going to go after man, date man again.
0: We just meet and go after man, he's not said on the mess.
1: We get to meet and go after man in this week. Because an animal doesn't have a voice, but we do have a voice. How to him, how done it is, you can help them when they're on this week again. Said you're going to talk to me and you're going to talk to me and you're going to talk to me.